दैट वॉज बड़ी देर ना दुनिया ने भाई अपना बना दुनिया ने भाई मोहे अब तो बुला ले. द नेक्स्ट सॉन्ग इज बड़ी देर भई, बड़ी देर भई. हियर इट इज.

बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर में राम। मोहम्मद रफ़ी, सोलो फ्रॉम बसंत बहार। आई हैव वन मोर सॉन्ग टू प्ले फॉर दिस आवर। इट्स अ ड्यूएट ऑफ लता मंगेशकर मन्नाडे फ्रॉम बसंत बहार, ए रोमांटिक सॉन्ग। बट बिफोर आई गेट टू द सॉन्ग, लेट मी कपल मेक कपल ऑफ कमेंट्स। नंबर वन, इन द सेकेंड आवर यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स फ्रॉम मूवीज, 1956 मूवीज, ऑल ऑफ दिस। एक ही रास्ता, चली गोरी पीसे मिलन को चली, परिवार, जागते रहो, चंद्रकांता, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। एंड देन लास्ट थ्री सॉन्ग्स ऑफ टुडे आर फ्रॉम मूवी फंटूश, 1956 मूवी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, दैट हैड देवानंद एंड हु द लीड एक्ट्रेस, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, शीला रमानी आई थिंक। बट ग्रेट फन मूवी एंड द सॉन्ग्स आर रियली फन। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड इन फॉर द सेकेंड आवर। एंड for again just an announcement kind of thing, if you wish to comment on or make any suggestions for the show or make requests, all you do is send me an email at dedicated email address for the show, musicofindia2015@gmail.com, musicofindia2015, that's the year we started the show, musicofindia2015@gmail.com, and I'll try to accommodate your suggestions the best I can. Again, just to mention something, next week, by the way, we are going to continue with the week 9 or part 9 of our nostalgia tour. I don't know how many more parts I have. I was looking at my playlists, my iTunes library, and I think I can do 2 or 3 or 4 shows, 1957 movie songs. I mean, they are great movies, great songs. This mid-50s was the golden era of Bollywood music, in terms of music, in terms of singing, and so on and so forth. So next week, I'll be playing songs from movies such as Bhai Bhai, Ashok Kumar, Kishore Kumar, rare combination of their acting together, Raj Hutt, Sohrab Modi movie, New Delhi, Kishore Kumar, I believe New Delhi had Nutan as lead role, CID, of course, whole bunch of great songs in CID, including Main Bombay Ka Babu, CID had, it was rated Binaka number, I can't think of it right now, Mame Sahib, Naya Andaz, Shamshad Begum, Kishore Kumar duet from that, Tufan Rodia, one of the first movies of Rajendra Kumar opposite Nanda, Nirbal Se Ladai Balwan Ki Ye Kahani Hai Diye Ki Tufan Ki, another song, मेरी आन भगवान पल कन कन से लड़ी है तुझसे भी आज लड़ेगी, अदर वन मेरी छोटी सी बहन देखो गहने पहन ससुराल चले रे बंठन के, एंड ऑफ कोर्स वील एंड नेक्स्ट वीक विथ सॉन्ग्स फ्रॉम चोरी चोरी, राज कपूर नरगिस दत्त मूवी। लेट मी गो हेड एंड प्ले फॉर यू द लास्ट सॉन्ग ऑफ फर्स्ट आवर, बसंत बहार, लता मंगेशकर मन्नाडे ड्यूएट, एंड दिस रोमांटिक सॉन्ग, बिना का नंबर 13 इन 1957, मेलोडियस रोमांटिक सॉन्ग पिक्चर निम्मी एंड भारत भूषण, नैन मिले चैन कहाँ, दिल है वहीं तू है जहाँ, ये क्या किया सैया सावरे, हो तूने ये क्या किया सरे सावरे, चुप चुप रह के लुटाया दिल तुझ पे, एक सुख पाया मैंने सौ दुख सह के, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आई होप यू एंजॉय द लास्ट सॉन्ग, एंड आई विल बी बैक विथ यू आफ्टर सॉन्ग फॉर टॉप द योर अनाउंसमेंट्स, हियर दिस सॉन्ग।

0: लहकी धुनक झुनक जब चुड़िया थनकी धुनक धुनक जब चुड़िया थनकी लहर लहर ओडनिया लहकी मृदंग ठनका झट झट झट झट नगन देश दे छगन लदादा किट झट झट झट झट झट तक छगन का छगन का किट तक किट तक छगन का दी तक नदा ताधा किट तक छगन का ताधा छगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा।
1: जा तो से नहीं बोलूं का नहीं अब फ्रॉम मूवी परिवार। द नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम परिवार इज एक्चुअली पिक्चराइज ऑन किशोर कुमार। आई इंक्लूड लिटिल बिट ऑफ डायलॉग बिफोर दिस सॉन्ग। किशोर कुमार हैड ए स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस फॉर दिस सॉन्ग ओनली एंड आई होप आई डोंट गेट इन ट्रबल फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग। द वर्ड्स ऑफ दिस सॉन्ग आफ्टर द लिटिल डायलॉग इज कुएं में डूब कर मर जाना यार तुम शादी मत करना। फनी सॉन्ग किशोर कुमार ने स्टेज परफॉर्म काइंड ऑफ सेटिंग एंड सॉन्ग हैज ऑल द किशोर कुमार सिंगिंग एक्टिंग एंटिक्स एंड आई एम श्योर यू नो व्हाट दोज आर। सो लेट मी प्ले दैट डायलॉग आई थिंक एंड देन सॉन्ग। हियर इट इज।
2: ठंडा जल में नहाने से गोला ठोजरा बैठ गया। कुएं में

हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी अच्छा ख्याल है आपका दीजिए मुझको पता अपने बाप का आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा अच्छा ख्याल है आपका।

0: खाएगा?
1: गेहूं और मसूर की दाल पे? निकल जा, निकल जा, निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे।
2: उसका भाई था अक्सर भारी, उसका

0: फिर एक रात को मैं तो तुमको दबा कर भागा, मैं तो तुमको दबा कर भागा, रास्ते में बोला मन का कागा।
1: क्या क्या

0: 你要好吗？我要好吗？我就好吗？很好，很好。
1: 中京、北京、南京、朝朝，京东变一变一蹦，轻松搞搞，哒哒，吉吉的，米克尔波罗老老，阿布内爸爸卡，毛什么吉克尔烤烤。
2: छुड़ाना फर्ज है उसका जिसे वो सुनता

0: गोशाल दुशाले, बुरों के मुंह में शक्कर और भलों के मुंह सरकाले, वहाँ रे ऊपर वाले वहाँ वहाँ आहा आहा खेत परे तो चुली तो अयो बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया शिम्बा अयो बढ़िया बढ़िया बढ़िया शिम्बा हाँ बाबा यो ए यो ले ले ना को ना भैया हो
1: Luba luba luba reggae chica chuba chuba kimba kimba kimba mi aja ki rumba
0: bala bala bala bala bala bala bala bala bahare upar wale baba yo hey yo lele la ko na bhaiya ho
1: Luba luba luba luba reggae chica chuba chuba kimba kimba kimba mi aja ki rumba
0: bala bala bala bala bala bala bala
1: hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey h